0: और थाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट

0: क्या बात है जी। 905-673-3337 वालियां लाइनां मैनूं लगदियां चालू साड़ियां हो गईयां आ। सो गल्लां बातां कर सकदे आ पंजाबी लहरां दे विच। सो स्टूडियो दे घड़ियां दे मुताबिक 8:42 हो चुके आ। थोड़ा साडा साथ हुण तों लै के 10 बजे तक बणिया रहना। सो 8:45 ते असीं खबरां लै के आवांगे तुहाडे वास्ते। उस तों बाद रेडियो प्रोग्राम उड़ान दे विच जुड़ांगे। सो फिलहाल तुसीं पंजाबी लहरां दे नाल आनंद माणो। इस तों पहलां साडे रिस्पैक्टड साढ़े वो घने संघने रुख जिन्हां दी छां थले बैठ के असीं AM 530 दे उत्ते मौजा माण रहे हैं थोड़े न रोज़ सांझ पाने। साढ़े सतेंद्र पाल सिंह सिद्धू हुणां नूं तुसीं सुन रहे सी ते मैं भी अज जाण बुझ के लेट होया। मैं क्या अज भाजी हुणां नूं थोड़ा जिहा होर सुन लीए। ये कदे कदे ऐसा सबब बनता आ। सो उन्हां नूं सुणन दा मौका मिलता ते तुहानूं भी। सो मैं रंग च भंग नहीं पाउणा चाहुंदा सी। मैनूं ऐ सी कि थोड़ा जिहा होर सतेंद्र पाल सिद्धू हुणां नूं सुणीए क्योंकि ये आवाज़ टावी टावी सानू सुनने में मिलती। अजक असं कहने कि भाजी तुम प्लीज़ 15-20 मिनट सानू जरूर तुम AM 530 आके अपनी आवाज़ सुनाया करो ताकि एक तुरदी फिरदी यूनिवर्सिटी और बड़ा कुछ सीखने मिलता। बोलन का लहजा सुभा अंदाज वो लफ्जा के जादूगर ने। सो 905-673-3337 जुड़े हुए हो पंजाबी लहरों के नाल। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु। क्या बात है जट बिल्कुल नहीं दबदे जी। 30 अगस्त नूं एमी विर्क पहुँच रहे ने द ग्रेट कनेडियन थिएटर कसीनो दे विच। जिहड़ा उत्थे थिएटर आ बड़ी बड़ा कमाल दा थिएटर आ बा कमाल थिएटर आ। सो उहदे विच रौनकां लाउणगे। उहदे विच एमी विर्क लाइव परफॉर्म करनगे। हिक दे जोर ते गाउण वाला गायक एमी विर्क। सो तुसीं इस नूं सुण सकदे हो ticketmaster.co ते अपनियां टिकटां चक लो। जे बालियां टिकटां लैणियां ग्रुप दे विच लैणियां तुसीं मैनूं कॉल कर लिओ 4378700 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ 8575।
1: ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੱਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ
0: ਜੀ।
1: ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 400-16 ਲੱਗਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ।
0: ओके मैं थानू ना दिना आ। मेरे को भाजी हुणां दी कॉल आई हुई है। साढ़े बड़े रिस्पैक्टड राइटर ने भाजी हुणी ते मैं उन्हां दी ना थानू नंबर लभ के अनाउंस करूँगा। तुसीं सुणदे रहो। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। 905-673-3337 मक्खन बराड होना दा आई थिंक मैनू मैसेज आया सीगा। सो मैं देखदा भाजी हुणां दा नंबर। मैं उन्हां नाल कॉल करके कन्फर्म करदा। मैं थानू रोंग इनफॉर्मेशन नहीं देना चाहुंदा। मैं राइट नंबर लैके मक्खन बराड भाजी जे तुसीं सानू सुन रहे हो तां मैनू तुसीं 437-870-001 ते टैक्सट कर दो तां कि आपां स्रोतियां नूं उह नंबर दे सकीए। टेंट दी जिहड़ियां सेवावां दे विच उहनां नूं कोई वर्कर चाहीदा। सो उस वर्कर लई बहुत सारी इनकुआरीज आ रहीआं ने। सो तुसीं मैनूं नंबर प्रोवाइड करो ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਰਕ ਐਮੀ ਵਰਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ।

0: शादी दी मूवी बनवा ले या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले। याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-903-1251 416-930-1251।
1: कनाडा विच प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
0: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दें देने
1: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलियां मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
0: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा 647-338-9172।
2: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई किथे जावां
3: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
1: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको।
4: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी
5: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल
4: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नाउ एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ कॉल 647-706-6640
5: 647-706-6640
6: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
0: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
6: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
0: 647-835-5294-647-835-5294
7: ਓਏ ਟਰੱਕ ਕਾਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਢਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂ
8: ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜੇ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ GTA ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਪ PNJ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ
9: ਪਹੁੰਚੋ 5330 ਬ੍ਰੈਡਕੋ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਮੈਥਸਨ
10: ਇੱਥੇ ਪੀ ਲਾਈਨ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਵੀਲਰਸ ਅਤੇ 18 ਵੀਲਰਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
8: ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਨ ਗੈਰੀ ਨੂੰ
10: 905-459-5533
8: 905-459-5533
10: PNJ Spring Wheel Alignment

सुपर मार्केट 905-286-9952 अंपीरियल क्राइएशन एंड ड्राई क्लीन वाले संपर्क कर लो 353 वेटरन्स ड्राइव ब्रैम्पटन 437-235-2700। गिरीश शर्मा जी मोर्गेज का कोई भी क्वेश्चन है थोड़ा चाहे 647-606-8810 हॉर्नबेल इंश्योरेंस तो रमनदीप 647-237-3133 से संपर्क किया जा सकता ते नाल दी नाल तुसीं पी एंड जे स्प्रिंगा के स्पैशलिस्ट ट्रैक्टर कंट्रोलिंग कमाणी का कोई भी काम करवाना चाहते हो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसिसागा डिक्सन मैथेसन का एरिया 905-409-5533 जे एंड गरी भाई जी संपर्क कर लियो। संदीप भाई संपर्क कर लियो बी ट्यून तो कलिजन तो तुम गड्डी खराब हो गई कितने रब ना करे कितने कोई एक्सीडेंट हो गया टो करवानी चाहते हो तो 299-544-5119 संपर्क कर लियो। क्वालिटी लजिस्टिक कंकालियां नूं काफ़ी सारे ड्राइवर की लोड़ आ जे तुम ड्राइवरी करने की थोड़ी जॉब नहीं मिलती तो भी तुम संपर्क कर लो ओनर ऑपरेटर तुम भी संपर्क इन्हों कर लियो तो या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की इन्हों अर्जेंट लोड़ आ तो कल कोई मिल गया हो मैं पता नहीं अपडेट नहीं मैंने होया तो कर लियो गलबात जो थोड़ी जॉब की लड़ा सिक्योरिटी गार्ड की 416-717-2939 या फिर 416-455-9311 तंदूरी बॉयज 905-956-2111 से संपर्क कर लियो। देसी सिने फिल्म तो जगदीश भाजी दवावं आप बीडियो उत्ते टेंट दवावं सारिया इन्हों इन्हों वालों ने 416-930-1251 सोफा स्टूडियो से शगनदीप ढिलों 905-799-8877 से संपर्क कर लियो। तो पंजाबी टिफिन सर्विस केटरिंग तो संपर्क कर लियो ब्याह शादी है घर कोई वो स्टाल लगाना चाहते हो 437-430-1063 तो सनी बाई जी गराज डोर रिपेयर का काम करते हैं 647-470-1245 तो पंजाब डे मेला कल तो पिकनिक अपनी परसों।

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: याद है मेनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी किन्नी परेशान हो गई सी मैं इंश्योरेंस नाल डील करना गड्डी पेंट कराना किन्ने झंझट थैंक्स कर दिया मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया रेंटल कार भी दिती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11 ते या कॉल करो 416-277-9221 416-277-9221
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हाँ ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉट सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: ਭੈਣ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਉਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੁਵੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699
5: पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
6: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज
9: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लब रहे हो फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकर लैंड विद 2 रोड फ्रंटेजेस डबल कार गराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
10: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
11: Chef, यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे हैं जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200
12: घर नूं पेंट कराउणा हुंदा है कन्फ्यूज हो जांदे हो बहुत सारे पेंटर्स ते पेंटिंग कंपनी दे नंबर पर तुसीं रियल्टी पेंटिंग नूं क्यों नहीं चुनोगे फायर स्टेशन फाइव स्टार होटल्स बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नूं पेंट कर चुके हन उत्थे तुहाडे घर नूं 24 घंटिआं दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नूं कोई भी मैच नहीं कर सकदा 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नूं कॉल कर सकदे हो 416-816-8401 416-816-8401
13: ड्राइव कर रहे हो सोनो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
14: ड्राइविंग लाइसेंस
13: नो
14: पुलिस ऑफिसर
13: नो नो
14: ट्रैफिक लाइसेंस
13: नो
14: देन
15: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना
17: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले उसमें से एक भी मैच नहीं हारे
18: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा, चैंपियन इन पराठा मार्केट,
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 9054512600, 905-455-2600।
19: ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਲ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਟਰੱਕ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਫ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਸਿਰਫ $45। ਤੁਸੀਂ ਕੈਟ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਦ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ $850। ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਰ ਡਰਮ ਐਂਡ ਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਚੇਂਜ ਐਟ $750 ਐਂਡ ਏਸੀ ਰੀਚਾਰਜ ਇਜ ਐਟ ਜਸਟ $180। ਸੋ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਕਾਲ ਐਟ 905-452-9955। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 71 ਸਟੈਫਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਹਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਦੈਮ, ਦੇਅਰ ਨੰਬਰ ਇਜ 905-452-9955।
12: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4141।
18: ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਗਰ।
17: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
18: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा, चैंपियन इन पराठा मार्केट,
0: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-455-2600।

0: Metro 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ।
0: ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, 30 ਰੈਂਬਲਰ ਡਰਾਈਵ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸਟੀਲਸ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 9054512600 9054512600।
2: रियल एस्टेट दी दुनिया विचाओ, अपने सुपनेयानु सच कर वखाओ। फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ।
3: रियल एस्टेट दियां परीकियां सिखो ते कंपनी वलो क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ।
2: फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नमी एजेंट हायर कर रहे ने।
3: आज ही कॉल करो फेयरडेल दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नू
2: 9056712000 9056712000।
3: फेयरडेल नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनेयानु सच कर दिखाओ।

0: माइग्रेन स्ट्रेस नींद नहीं आती बहुत प्रॉब्लम है तो ना शिरोधारा एक ट्रीटमेंट आ जिहदे विच इह तेल मत्थे ते पाउंदे आ जिहड़ी थर्ड आई हुंदी आ विचाली अख हुंदी आ उहदे ते पाउंदे ने ते मत्थे दे विचकार ते थोड़ी जिहड़ी नींद दा सुभाव बदल जांदा बेचैनी रहिंदी आ तुसीं मालिश जरूर करा के देखो तुहानूं सुकून मिलेगा सिर्फ $55 खर्च के ब्रिजी नाल 2.5 साल तो उपर दा टाइम होगा ब्रिजी कितना टाइम हो गया आपको हमारे साथ बोलते हुए अरे बाबा लाइफ ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता अच्छा चौथा साल हो गया मैं 2.5 साल लेके जाना फोर्थ ईयर हो गया ब्रिजी नु मेरे नाल आंदे आ ते तकरीबन 1000+ जिहड़े फैमिलीज ने उन्हां दी मालिश कर चुके हैगा ये अपने स्पैशल तेल ने इन्हां दे उन्हां तेलां दे नाल तुहाडे शरीर नु मन नु सुकून दूगा 55 खर्चने ने मेल और फीमेल यानी हसबैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं लेडी जिहड़ी है जिहड़ियां इन्हां दियां मालिश करन वालियां लेडीज़ दे लई टेक केयर करदियां ने ब्रिजी बंदियां दे टेक केयर करदा नंबर इको आ माल्टन गुरुद्वारे दे कोल इको लोकेशन है पुराने बंदियां चों ब्रिजी ब्रिजी नंबर बोलो
1: 647-619-1369
0: वीकेंड के स्लॉट्स कितने पड़े आपके पास
1: लिमिटेड स्लॉट्स आर अवेलेबल ऑन वीकेंड्स
0: हां तुसी ये क्योंकि आप अपने हत्था ना काम करदे हत्थी किरत करदे ने ते दसा नौहां दी किरत खांदे ने लिमिटेड स्लॉट हुंदे ने तुसी इन्हां कोल पहुंचना हैगा और ये जानदे ने थोड़ी बॉडी च सोजिश किथे आ थोड़े कोई जोड़ या किते भी दर्द ने उन्हां नूं भी पहचान सकदे आ इत्थों हत्थ ला के दस दो इत्थे दर्द आ 647-619-1369 1-647-619-1369 ब्रिजी नूं कॉल करनी है

0: पास या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: डेल मुंडी रियल स्टेट दा सितारा लोकां दा विश्वास डेल मुंडी नवे प्रोजेक्ट दा माहिर डेल मुंडी डील दवाउण दे विच होर वाधा करदा डेल मुंडी कम्युनिटी विच लंबे समय तो नाम बना चुका डेल मुंडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दीआं बरीकियां नूं समझण वाला डेल मुंडी अगली प्रॉपर्टी तुहाडी एक्सपर्ट एडवाइजर रियल्टर डेल मुंडी 416-313-1313 डेल मुंडी 416-313-1313
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
3: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
4: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
5: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालो ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
4: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
5: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
6: आज खुश तो बात हो गया
7: ओ ता होना ही है जो तक ढिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है
6: आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी
7: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
8: चल क्या रहे यहां पर
7: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
7: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com होर कोई सेवा
10: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल
1: 32 55 80 98
2: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 ड्राइव नियर चिंगूजी कॉल 9054502828 905-450-2828
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nanda Ji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nanda Ji 647-822-9607 647-822-9607।
5: मित्रां दे जंक्शन ते।
6: ओ केड़े जंक्शन ते?
7: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
5: रात लगियां महफलां रे।
7: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
8: बिल्कुल जी, टिक्का जंक्शन दे उत्ते हर फ्राइडे लाइव म्यूजिक सुनो, बढ़िया खाना खाओ, पहुंचो रदरफोर्ड ते क्वीन दे कॉर्नर दे उत्ते। जुड़े हो वतन दूर दे नाल। और मैं पहला भी दस के गया कि एक 2 बेडरूम दी अपार्टमेंट ब्रैम्पटन दे इलाके च नवी, बिल्कुल नवी, और एक वाशरूम दे नाल 1100 कुछ स्क्वेयर फीट है। सिर्फ $4 लाख तुहानू मिल सकदी है। नंबर है 416-881-7070। तो किरण जी, काफी जी। बहुत सारे फोन आ रहे ने जेडे कि आपा बोल लिया कि जेड़ा प्लाजा ब्रैम्पटन च बन जा रहा, 2 साल तक बन के रेडी होना, तुसी सिर्फ 5% डाउन दे के ही उनू होल्ड करना। और जेड़ा मर्जी बिजनेस खोलन लिए हाले अवेलेबल है, और कुछ कल भी साडे कोल 3-4 यूनिट बुक होए ने। बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने परिवारों का, शुभकामनावां उन्हां दे बिजनेस लिए, व्यापार लिए। और 2 साल बाद इन्हां दी कीमत फिर बढ़ जानी है। और हाईवे 410

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तां तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: चलो एम 530 तो तुसी सुन रहे हो अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पौंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 ਜਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਬੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश नाल जुड़े हुए दोस्तों मैं एक थोड़े माई एरर हो गया मेरे ना पिछों थोड़ी गलती हो गई मेरे तो एमी विर्क दे शो तुहाडी कॉल आ गई मैनू स्टूडियो दे विच एमी विर्क दा मैं गल कीती सी कि 25 डॉलर दी टिकट मिल रही है अज तुहानू शाम तक बुक करोगे तो हाँ बिल्कुल ठीक है पर मैं थोड़ा जिहा उहदा ना पासपोर्ट तुसीं मंग रहे हो मेरे तो तुहानू दस्सदा कल्ला एमी हैगा AMM भाई मैं कहते एमी मैं पाता एमी मैं कहता एमी विर्क पूरा नहीं है कल्ला एमी हैगा दा पासवर्ड तुसी ऑनलाइन जाओगे ticketmaster.ca ते जाके अपनी टिकटा बुक करा लो 4 crore 25 डॉलर दी टिकट होएगी ते ईमेल च आ जाएंगे पर उहदा पासवर्ड हैगा एमी ते कल्ला एमी लिखना ते जवाब दे के तुहानू मिल जाऊगी साडे हुणे ही सज्जन दी फुकार आई सी कहिंदे कि एमी विर्क पाया पूरा चलिया नहीं मैं कहा भाई चलो मैं पता करना वो कहिंदे पूरा एमी पाउणा कल्ला एमी विर्क नहीं पाउणा तू पासवर्ड हैगा एमी ते टिकट तुहानू मिल जाणी 25 डॉलर दी ऑनलाइन जाके बुक कर लो ticketmaster.ca रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो जुड़े हो गीत संगीत गल्लां चलदी रहनी आ काफ़ी फरमाइशां होर भी पईआं पेंडिंग देखा कड़ी कड़ी हैगियां ते ओह भी तुहानू पेश कर दिंदे आ रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश दे विच जुड़े रहो साडे नाल ठीक शाम दे 6 बजे तक

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं,
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं,
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं,
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं,
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं,
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं,
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं।
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे 7 दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: Dosto sasika namaskar madan
4: for the Adam Hansraj Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television, Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet and Realtor Harp Garewal present The

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो मेरे नाल नचिए, नचिए पाँच बाहपा, वे आ जा दो मेरे नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: अगर तुसी घर दे मालक हो तां ध्यान नाल सुनो, जे थोड़ी प्लमिंग नू कोई हाथ ला रहा चेक करो, लाइसेंस ने, इंश्योर्ड ने, WSIB कवर्ड ने, प्लमिंग कोई मजाक नहीं, एक रॉन्ग फिटिंग, एक लूस लाइन ते मिंटा विच फ्लड, वाटर डैमेज, मोल्ड वर्गियां चीजां हो सकदियां ने। जेसीज प्लमिंग लाइसेंस्ड मास्टर प्लमर्स, फुली इंश्योर्ड अते WSIB कवर्ड ने। कोई भी लीक्स, फॉसेट्स, टॉयलेट्स, कोई हॉट वाटर नहीं आ रहा, ब्लॉक्ड ड्रेन्स ने, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, फास्ट, क्लीन, ऑनेस्ट अते प्रोफेशनल सर्विस। जेसीज प्लमिंग 647-969-1298, 647-969-1298, जेसीज प्लमिंग।
4: JS Home Improved ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਬੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਕਿਊਮ $500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਡੋਰ ਓਪਨਰ ਲਿਫਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇ $350 ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਗਰਾਜ ਡੋਰਸ $349.99 ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ JS Home Improvement, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਨ ਬਿਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। 9057890333, 1098 ਪੀਟਰ ਰੋਬਰਟਸਨ ਐਟ ਟੋਰਬਨ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਪਲਾਜ਼ਾ, 905-799-0333।